0: चाल सी पोदिए होली दे तो इनका ये जो मेह के लाई जो आप और नई जिले बनाई गेम ये लो ये जो मेह के ना लाई और लेम लाई के ना लिए
1: बन जंगल से जुड़ी सी गेम बारी लो बाली नाली कुचिला चुली यात्रा रो सतां सो चिमी मेह चाल सो सही के खेले हैं
0: बन जंगल मेह लाई के ना लिए मेह वाला दिखी नहीं पार सो ना करना ना रे मिली देखो नहीं सानो सो मेह के सही
1: बता सो चुली जो बेला तो जिजिन के कोटल मेह के सतां के लिए मेह नो के मचिनी मेह चाल सो के खबर गिरी
0: अनुरोध सुनसरी गाउँ पालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।

हजुर नमस्कार नमस्कार नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत एवं न्यानो लोकसांगीतिक अभिवादन टक्र्याउँछौ तपाई सम्पूर्णलाई यति बेला।

मझिदाई पोखरा फेवाताल को लम्माया साचई को नलम्भू ख्याल ख्याल को मिलन लामा र बीमा कुमारी दुरा को आवाज छोड़े आवाज बाट म वीरेन्द्र गिरी विदा होने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। रेडियो सुन्ने बानी को विकास गरौं। रेडियो कार्यक्रमलाई माया गरौं।

0: 07-6670
1: दाङ पाप रोग एन्ड स्किन केयर सेन्टर काली ट्राफिक चोकदेखि 100 मिटर पश्चिम उकालो तर्फ घोरानी दाङ।

लाई मस्न चतुर्पती बलदथा तुंग लाई कृष्ण चतुर्फूल फुलदथा पानी लाई मस्न चतुर्पती बलदथा तुंग लाई कृष्ण चतुर्फूल फुलदथा हाथ जी चला चले तो उस हाथ जी चला।